माशाल्लाह काफी लोग ये ट्रैक एंजॉय कर रहे हैं, मेरे प्यारी दोस्त शाहिदा पाक, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है. इंशाल्लाह लबैक का नारा जब लगाते हैं तो अल्लाह के सामने हम हाजिर हो जाते हैं. और काफ़ी लोग जा रहे हैं हज पे, तो मैं कुछ नाम ले लूँगी. महमूद खतीब साहब, शौकत और उनकी बेगम, शमशु, हलीमा, कबीर, नीसा, दाऊद साहब रोईकर और उनकी खूबसूरत बेगम नसरीन शफीकर और लियाकता के साथ एक दलवाए, हसीना दलवाए, जमीला उमर, कबसुरकर, फातिमा, काफ़ी लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह. और अल्लाह ताला इनके हर अरकान में इनकी मदद करे, इनकी हज कबूल करे और ये खैर और आफियत के साथ घर आए, ये दुआ है हमारी. तो अगला कलाम है मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ में, हज के ऊपर ही, बाबा हज को चलें.

लोगों ने मेरी गुर्बत और मजबूरी का मजाक उड़ाया, मुझे दुनिया की निगाहों ने हकीर बना दिया मेरे रब। पर तू तो अल-मुइज़ है, तू अपने बंदों को इज्जत देने वाला है। इंसान की बनाई हुई दुनिया से थक गया हूं मैं, मुझे अपने दमाने रहमत में छुपा ले, मेरी लाज रख ले मौला।

अल्लाह, सब कहते हैं वो मेरे हैं पर बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं होता। मैं अकेला रह गया हूं इस दुनिया के मेले में मेरे रब। मेरी रूह घबरा रही है, मेरे दिल की धड़कनें डूब रही हैं। तू तो कहता है तू शाहरग से भी ज्यादा करीब है, तो फिर आकर मुझे थाम ले मौला, मुझे इस तन्हाई से निकाल। मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज ना रहूं।

जी हाँ, ये ट्रैक हमने स्पेशली मैंने प्ले किया क्योंकि जस मैं तस्लीमा की वालिदा जमीला बाना से बात कर रही थी, तो कह रही थी तस्लीमा बहुत कुछ कर रही थी, उनकी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो अपने आप को बहुत बेबस, तो मैं उनको यही समझाने जा रही थी कि रब पर भरोसा रखें और उसके सिवा किसी की मोहताज न बने। तो ये हमारे रब पे अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा ख्याल ज़रूर रखेगा। मालूनकर साहब और तस्लीमा आप इस दुनिया में नहीं रही, तो अल्लाह ताला, मैं फिर से दुआ करती हूँ अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनके कब्र में नूर डाले और उनके घर वालों को इत्मीनान दे और सुकून दे। अगला कलाम भी मैंने लिया है, अब तुम ही नहीं रहे तो।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और ये कलाम मैंने ऐसे ही चूज किया, लेकिन मेरी बहन शाहिदा जावेद दलवी, इनका मैसेज आया, सलाम माय सिस्टर, होप यू वेल, बहुत शुक्रिया फॉर अ ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ नाथ्स एंड सॉन्ग्स, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग सॉन्ग्स, मिसिंग माय जावेद अ लॉट, प्लीज सेंड मी. तो ये ट्रैक मैंने ऐसे लिया, लेकिन इसमें जावेद का भी नाम आता, तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे मेरी बहन, और ये हम सबको उस राह पे जाना है, आज नहीं तो कल. अल्लाह आपके हर मुश्किल को आसान करें, ये हमारी दुआ है. तो अगला कलाम, क्यों रोते हैं वो उसके लिए.

जी बेशक हम रोते हैं जो हमारे अपने जब हमें छोड़ के चले जाते हैं उनकी याद में हम रोते हैं और अपने आप को दुखी, और ये इंसानी फितरत है कि हम हमारे अपनों को कभी नहीं भूल पाएंगे, खासकर हमारे वालिदैन जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे अपने भाई बहन, हमारे शौहर, हमारे रिश्तेदार। लेकिन हम इस अल्लाह के फैसले पे हमें राजी होना चाहिए। तो अगला कलाम है आखिरत की फिक्र।

मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी की जान है, फिर भी बशर को कितना गुमान है। इंसान, तू इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया, मौत को भूल बैठा, गफलत में सो गया। याद रख, ये सांसें अमानत है, तेरी जागीर नहीं।

बहुत शुक्रगुजार हूं आली जनाब दर्शन साहब और पूरी टीम का, बड़े नायाब तोहफे से आपने मुझे नवाजा। मौला आपको सलामत रखे और आपकी इस मोहब्बत को दायम कायम रखे। आज मुझे सरजमीन नागपुर से दोबारा बड़ी मेहनत करा हुआ तोहफा अता किया गया है आप ही लोगों की जानिब से बहुत साल पहले, और आप यकीन करिएगा मैं अपनी खानकाह में उसको आज भी बड़े हिफाजत से रखा हुआ हूं। इंशाल्लाह इसको भी मैं बहुत हिफाजत से रखूंगा और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप तमामी हजरात।